0: ये पुस्तक मर चुकी है, मर चुकी है, इसने ना पढ़ा, इसने ना पढ़ा, इसने ना पढ़ा। संविधान, संविधान, संविधान, संविधान, संविधान, संविधान। ये पुस्तक मर चुकी है, इसने ना पढ़ा। इसके लफ्ज़ों में मौत की ठंड है, एक एक सफा जिंदगी के आखिरी पल वर्गा भयानक। जब ये पुस्तक बनी सी तां मैं एक पशु सा, सुत्ता पिया पशु, ते जब मैं जाग गया ते मेरे इंसान बनने की ये पुस्तक मर चुकी सी। हुण जे इस पुस्तक नूं पढ़ोगे तां पशु बन जाओगे, सुत्ते हुए पशु, सुत्ते हुए पशु। बिल्कुल सीडिशियस है, बिल्कुल सीडिशियस है, सीडिशियस है, सीडिशियस है। संविधान, संविधान, संविधान, संविधान, संविधान, संविधान। ये पुस्तक मर चुकी है, इसने ना पढ़ा। इसके लफ्ज़ों में मौत की ठंड है, एक एक सफा जिंदगी के आखिरी पल वर्गा भयानक। जब ये पुस्तक बनी थी तां मैं एक पशु सा, सुत्ता पिया पशु, ते जब मैं जाग गया ते मेरे इंसान बनने की ये पुस्तक मर चुकी सी। हुण जे इस पुस्तक नूं पढ़ोगे तां पशु बन जाओगे, सुत्ते हुए पशु।
1: ये तो बड़ी सीडिशियस पोएम है।
0: बिल्कुल सीडिशियस है। तो वो नहीं है, एक जगह वो लिखता है पाश, मैं थुकदा गुंडियां दी सल्तनत, हिंदुस्तान दे निजाम नूं वही

बात मैं करने आया रहा हूँ। देख लो कौन है क्या है, तस्दीक कर लो, उसके बाद तो सब लिखा पढ़ी बन जाती है, देख लेना। अब उधर का जो है संभाले रहना, सब अधिकारी सब फोर्स इधर उधर कर रहे, हाई अलर्ट रहना। और उधर से कोई भी पत्रकार जो है मतलब जो नक्सलियों को कवर करने जाएगा उसको सीधा मरवा देना, समझ गए? राजा सर, राजा सर, वो कल के ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके।